रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कैरी में खुला नया खूबसूरत पार्क डाउनटाउन कैरी पार्क अपडेट जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ प्रकृति के बीच सुकून। जी हाँ, कैरी के नए डाउनटाउन पार्क को लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है, जैसा आप लोगों का निर्वाणा नाइट्स को मिलता है, ठीक वैसा ही। एंड मज़ेदार एक्टिविटीज़ आज शाम को यहाँ बच्चों के लिए मुफ्त कहानी सुनाने, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग का सेशन, और बड़ों के लिए लाइव गिटार म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप काम के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो यहाँ आप ज़रूर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इनके गाने। स्टोरी टेलिंग भी इतना अच्छा है कि आप आपके बच्चों को एक नई सीख दे सकते हैं थ्रू स्टोरीज, एंड बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंजॉय किया आपने ये गाना जिसने सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। तो डरम के स्कूल ने जीता ग्रीन रिबर अवार्ड, क्या बात है, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण में नंबर एक डरम के एक लोकल स्कूल को पर्यावरण को बचाने और बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन रिबन स्कूल का सम्मान जो है वो मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप नेचर की टेक केयर करो, नेचर आपकी टेक केयर ज़रूर करेगा। इस स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा ऑर्गेनिक गार्डन बनाया है जहाँ वे खुद सब्जियाँ उगाते हैं, वाह वाह वाह वाह, और सोलर एनर्जी के बारे में सीखते हैं, क्या बात है। एजुकेशन हो तो ऐसा, एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

मैं कहता हूँ ना कि एनिमल को अगर आप पालते हो तो प्यार से पालना चाहिए, इमोशंस उनको भी होती है ना। तो एक खबर ये थी और ये खबर ये है कि वेक काउंटी एनिमल शेल्टर क्लियर द शेल्टर में बड़ी कामयाबी। क्या बात है, बेजुबानों को मिला घर। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। वेक काउंटी के एनिमल शेल्टर से एक बहुत बड़ी प्यारी खबर आ रही है। इस हफ्ते चले स्पेशल कैंपेन के तहत 50 से ज़्यादा बेघर कुत्तों और बिल्लियों को प्यारे परिवारों ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं अडॉप्ट करके आपका काम हो गया, आपको अच्छे से पालना भी है। शेल्टर होम ने उन सभी नेक दिल लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इन बेजुबानों को एक नई जिंदगी दी है। जिंदगी दे तो दी है लेकिन अच्छे से पालना, ये जिम्मेदारी से मुकरिएगा मत। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और मौसम का हाल तो सुनिए जनाब। तो हाल यू है कि आपके लिए एक और अच्छी खबर मैं लेकर आया हूँ कि आज और कल पूरे ट्रायंगल इलाके में मौसम बेहद सुहाना और खुशनुमा रहने वाला है। हल्की धूप और ठंडी हवाओं के साथ शाम की वॉक का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, और इस वॉक के दौरान आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप प्यार करते हैं, हाथों में हाथ थामे आप वॉक कर रहे हो, तो बात ही कुछ और है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, है ना। ये गाना सुनने का मज़ा इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या आपका कोई पार्टनर है जिन्हें आप वॉक पे लेना चाहते हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो मेरे थ्रू ये बात आप उन तक पहुंचा सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि बॉलीवुड की खबरें मैं आप तक पहुंचाऊं। बॉलीवुड की माया नगरी मुंबई से मैं खबरें जो है वो चुन चुन के आपके पास पहुंचाता हूं। तो पहली खबर है श्रद्धा कपूर एंड स्त्री यूनिवर्स के फैन के लिए। जी हां, स्त्री थ्री की शूटिंग की तारीख सामने आ चुकी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार की जोड़ी, जी हाँ, स्त्री टू की ऐतिहासिक सफलता के बाद मेकर्स ने स्त्री थ्री पर काम शुरू कर दिया है। मतलब कमरिया हिला दे। कब शुरू होने वाली है फिल्म? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और अगले साल की शुरुआत में ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव एक बार फिर हमें डराने और हंसाने के लिए तैयार है। एंजॉय कीजिएगा अगला ये गाना।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कहूंगा कि मेरे पास का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: I'm me on the mic, writing what I feel.
1: वेल एंजॉय किया आपने गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन। अगली खबर रणबीर कपूर के बारे में है, उनकी फिल्म रामायण का नया अपडेट आ गया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है। खास बात, खास खबर यह है कि फिल्म के VFX और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड की सबसे

अब स्त्री 3 की शूटिंग तो शुरू होने वाली है, लेकिन स्त्री 2 के बारे में मैं सोचता हूँ और सर कटे के बारे में जब सोचता हूँ तो सर चकरा जाता है। सर कटा का जो कैरेक्टर था स्त्री 2 में, मतलब माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर था यार, मैं सच में बता रहा हूँ। और क्या मूवी की थीम थी, क्या मूवी थी। स्त्री 2, स्त्री 1 तो कमाल की थी, लेकिन स्त्री 2 में जो मज़ा आया जैसे ही सरकटे की एंट्री होती है, वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब बहुत अच्छा। ये यूनिवर्स, मुंजा नाम की भी एक फिल्म आई थी, यू नो, सो ये जो यूनिवर्स है हॉरर प्लस कॉमेडी में, हॉरर का जो तड़का लगाया जा रहा है इन दिनों बॉलीवुड में, ये काफ़ी अच्छे लेवल की फिल्में बन रही है। और म्यूज़िक तो है ही, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। और यस, सब लोग इंतज़ार वाकई में कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड शाहरुख खान को मिला इंटरनेशनल सम्मान। जी हाँ, किंग खान बादशाह शाहरुख खान को मिला इंटरनेशनल सम्मान। तो क्या है ये सम्मान, बताने जा रहा हूँ आपको कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है, ग्लोबल आइकॉन। उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख ने इस अवार्ड को अपने करोड़ों फैंस के नाम किया है एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब रिटायरमेंट का अवार्ड नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड दिया गया है एंड ये सम्मान है, इंटरनेशनल सम्मान। तो वैसे भी शाहरुख खान की इंटरनेशनल लेवल पे भी फैन फॉलोइंग बहुत है। आई एम द बेस्ट, ये गाना उन पर खूबी जचता है। इन्जॉय करते हैं अगला एक गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था कि मौसम जो है ये काफी सुहाना हो रखा है, और ऐसे सुहाने मौसम में एक कप अदरक की कड़क चाय मिल जाए और साथ में निर्वाणा नाइट्स शो चल रहा हो तो क्या ही कहने। मतलब इतना अच्छा मौसम है, बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे गर्मी से, उमस से, तो ये परेशानी अभी तो हट जाएगी क्योंकि ठंडी हवाओं का जो जलवा है वो धीरे धीरे बिखरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ना। तो यही बात है कि ये हवा के साथ एंजॉय करना चाहिए, हवा के झोंके की तरह, लाइक अच्छे से रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो थिंग इज दैट स्ट्रेस ज़्यादा लेना नहीं है, काम का टेंशन तो हर किसी को है, लेकिन मोटिवेट होके काम करना बहुत ज़रूरी है। काम नहीं करोगे तो कैसा होगा, है ना। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

एंड जैसे ही मैं सोशल मीडिया थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आगे जो बापा बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के घर पे जो गणपति बापा बैठे हैं, जिस प्यारे अंदाज में उन्होंने बापा की आरती करी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के यहाँ के बापा जो है, बापा तो सबके लिए खूबसूरत है ही, कोई नो डाउट। एंड सल्लू मियाँ भी हमारे जब बापा के दर्शन के लिए आए थे तो उनका वॉन्टेड वाला लुक वो लेके आया है, उन्होंने एक ऐसा रुमाल बांधा है जो हमेशा वो पहले बांधा करते थे, एंड शर्ट उनकी लाइक टिपिकल स्टाइल में, उनका देखने का अंदाज एंड उनकी जो वॉकिंग स्टाइल है, इट्स लाइक आइकॉनिक ब्रो। तो सलमान खान भी नज़र आए हैं, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ नज़र आते हैं। संजू बाबा का भी अलग ही स्वैग, उनका ड्रेस देखने मिला है, तो ये तो चलते रहेगा यार, है ना, बापा है, खुशियों का माहौल है, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: और बिस्मिल्दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।

0: मिलता संदेश, लखनऊ जाने वाली ट्रेन, उसमें छोटू सुन, तेनू बिस्मिल का संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन, 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, उसमें लूटेगा
1: नहीं
0: यार, उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश।

0: इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस्ती

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

MCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक। सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Sağlar dedim ki feelings black.
1: सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक, सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: silky feelings.
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक। सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मैं पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: Dilky Feelings.
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक। सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और हम सुन रहे हैं रोहन की कहानी। तो रोहन पहुंचा अमन के घर। अमन का एड्रेस ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन 90s में दोस्ती का एक फायदा था, किसी के पास फेसबुक प्रोफाइल नहीं होती थी, इसलिए लोगों को याद रखना पड़ता था। रोहन ने 3 पुराने क्लासमेट्स को कॉल किया। पहला बोला, अमन हाँ यार दुबई गया था शायद। दूसरा बोला, अरे नहीं यार बेखा से बेंगलोर में है। तीसरा बोला, अरे यार वो तो स्कूल के बाद शायद म्यूजिशियन बन गया था ना। रोहन हैरान, म्यूजिशियन? हाँ गिटार बजाता तो था। उसका नंबर है क्या? यार पता नहीं यार। उसका एड्रेस है क्या? यार वो भी नहीं पता। तो फिर पता क्या यार तुझे? बस इतना कि उसकी शादी में नहीं गया था, दोस्त बोला। रोहन ने फोन काट दिया। 2 घंटे बाद उसी का मैसेज आया, मिल गया अमन, ओल्ड रेलवे कॉलोनी में रहता है, ये रहा एड्रेस। रोहन वहां पहुंच गया, एक छोटा सा प्यारा सा घर। दरवाजा खुला, अंदर से गिटार की आवाज आ रही थी। रोहन नॉक किया, म्यूजिक रुक गया। दरवाजा खुला, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 20 साल, कुछ सेकंड की खामोशी। अमन बोला, तू मोटा हो गया। रोहन हंस पड़ा, तू भी, मैं तो म्यूजिशियन हूं, मुझे आर्टिस्टिकली मोटा बोल। दोनों हंस पड़े। और पता नहीं क्यों 20 साल की दूरी 1 मिनट में थोड़ी छोटी लगने लगी। रोहन ने कैसे टेबल पर रखा, अमन का चेहरा बदल गया। ये तुझे कहां मिली, तू बता। अमन ने कैसे उठाया, कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, मीरा ने दी थी मुझे। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा, मीरा? अमन ने सर हिलाया, उसने कहा, मीरा ने कहा था अगर कभी रोहन तुम्हें दोबारा मिले तो उसे दे देना। तो तूने मुझे दी क्यों नहीं? अमन चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसने मुझे मना किया था बाद में, उसने कहा कि वक्त आने पर देना। रोहन ने पूछा, वक्त कब आने वाला था? अमन ने टेबल का ड्रॉर एक एनवलप निकाला, उस पर लिखा था, रोहन को तब देना जब वो समझने लगे कि उसने क्या खोया है। रोहन ने एनवलप खोला, अंदर से एक रेलवे की टिकट थी, दिल्ली टू जयपुर, और डेट थी 17 अक्टूबर 1998।

रोहन ने टिकट को देखता रहा, ये क्या है? अमन बोला, तुझे जयपुर जाना चाहिए। अभी? तो अमन बोला, ऑब्वियसली 1998 में ट्रेन पकड़ना मुश्किल होगा ना। रोहन हंस पड़ा, तू अभी भी इडियट है यार। तो अमन कहते, थैंक्स, तू भी। अगली सुबह रोहन जयपुर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठते ही उसे 90s की याद आ गई, विंडो सीट, वो स्टील का टिफिन और अखबार में लिपटे हुए आलू के पराठे, भिंडी, सूखे आलू, अरबी अचार, और वो अंकल जो बिना पूछे पूछते थे, बेटा कहाँ जा रहे हो, और फिर पूरी फैमिली हिस्ट्री जान लेते थे। रोहन विंडो से बाहर देखता रहा, उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि मीरा जयपुर में क्यों थी, वो बिना बताए गई क्यों। जयपुर पहुंचकर टिकट के पीछे लिखा एड्रेस ढूंढने लगा। एड्रेस एक पुरानी हवेली का था। गेट पर एक बुजुर्ग आर्मी बैठे थे। रोहन ने एड्रेस दिखाया, यहां मीरा रहती थी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, रहती थी, अब नहीं। रोहन का दिल डूब गया, वो कहां गई? बुजुर्ग ने अंदर की तरफ इशारा किया, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है। अंदर एक कमरा था, कमरे में एक टेबल, टेबल पर एक CRT टेलीविजन, एक VCR और एक VHS कैसेट। रोहन ने लेबल पढ़ा, रोहन लास्ट चांस। उसने कैसेट VCR में डाली, स्क्रीन पर स्टैटिक, फिर नीरा नजर आई, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। हाय इडियट, रोहन की आंखों में आंसू आ गए। मीरा स्क्रीन पर बोली, तुम सोच रहे होगे मैंने तुम्हें छोड़कर गई क्यों। सच ये है रोहन, मैं गई नहीं थी। स्क्रीन ब्लैक हो गई, फिर एक लाइन आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients. Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira mein kho jao.
1: रोहन स्क्रीन के सामने बैठा था, वीडियोस दोबारा चली, मीरा की आवाज आई, 1998 में तुम्हें एक लेटर मिला था। रोहन ने सर हिलाया, लेटर? उसे कुछ याद नहीं था। तुमने वो लेटर पढ़ा भी नहीं। रोहन ने वीडियो पॉज कर दी, उसने आंखें बंद करी और फिर एक याद, एक मेमोरी, स्कूल का कॉरिडोर, मीरा हाथ में एंड्रॉइड लेकर खड़ी थी, रोहन फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भाग रहा था, मीरा कह रही थी रोहन एक मिनट, और रोहन बोला था बाद में, बस बाद में, और वो बाद में कभी नहीं आया। रोहन ने वीडियो दोबारा चलाया, मीरा बोली, उस दिन मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था, हमें जयपुर जाना था, मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम आए ही नहीं। रोहन धीरे से बोला, मीरा। स्क्रीन पर मीरा मुस्कुराई, तुमने सोचा मैं बिना बताए चली गई, मैं भी सोचती रही तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। फिर जिंदगी चलती गई, कॉलेज, जॉब, फैमिली, लेकिन कुछ कहानियां वो बस रुक जाती हैं, खत्म नहीं होती। वीडियो खत्म होने से पहले मीरा ने एक और बात कही, रोहन अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक लास्ट जगह जरूर जाना। स्क्रीन पर एड्रेस आया, जयपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4। और लिखा था शाम 6:30। रोहन ने घड़ी देखी, 12:00। परफेक्ट, उसने कहा, फिल्मों में हमेशा टाइम कम ही होता है। वो भागा और स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म 4 पर भीड़ थी, ट्रेन आ रही थी, अनाउंसमेंट्स हो रही थी। रोहन इधर उधर देख रहा था, 6:29, 6:30, 6:31, कोई नहीं, 6:32। फिर पीछे से आवाज आई, तुम लेट हो। रोहन पलटा और उसके सामने मीरा खड़ी थी।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: वेलकम बैक, मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें. हम कहानी सुन रहे हैं रोहन की, लेकिन उससे पहले ये जो गाना था जी जी की गैंटनेस, आपने देखी है वेब सीरीज सिंगल पापा कुणाल खेमू? यार मुझे बहुत मस्त लगता है, व्हाट अ कॉमिक टाइमिंग कुणाल खेमू साहब की एंड अर्शद द्वारसी एंड अरे मैं नाम कैसे भूल गया, अरे वाह मैं नाम भूल गया. एनीवेज थ्री इडियट के जो राजू थे यार, क्या हर्षमन जोशी यार, मुझे लगता है आप लोग कहेंगे अक्षय कुमार ऑफकोर्स, लेकिन ठीक है यार, मतलब ये जो तीन हैं आई एम श्योर और भी हैं जिनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बट क्या अमेजिंग टाइमिंग होती है एंड मोस्टली दे डू अ वेरी क्लीन कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी. लेकिन जरूर देखिएगा अगर आपने देखी नहीं है वेब सीरीज सिंगल पापा, बहुत ही अच्छी सी लाइट सी है, मजा आएगा. मुझे घर बड़ा अच्छा लगता था, आई एम लाइक कौन है ये लोग जो इतने बढ़िया घर में रहते हैं दिल्ली में. बट एनीवेज लेट्स बैक टू द स्टोरी नाउ. तो स्टेशन पे रोहन पहुंचा, वहां उसे मिली मीरा. मीरा को देख के रोहन कुछ भी नहीं बोल पाया, मीरा हंस पड़ी. अब क्या हुआ रोहन ने कहा, तुम वही, तुम सच में हो क्या? मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया, अब क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो फोन वोन तो बजते ही रहते हैं, तो हाँ फोन भी बज गया था वहां पे जो अभी आपने सुना. मीरा ने हाथ बढ़ा के और आके बोला कि चेक कर लो. रोहन हंस पड़ा, तुम बिल्कुल नहीं बदली. मीरा कहती है, झूठ, थोड़ी तो बदल गई हूं. दोनों प्लेटफॉर्म के बेंच पे बैठ गए. कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर रोहन ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मीरा ने कहा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई. क्या? हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन एक बात हमने कभी पूरी नहीं करी. रोहन चुप रहा. मीरा ने कहा, मैं तुमसे उस वक्त मिलना चाहती थी, तुम नहीं आए. फिर मैंने सोचा शायद मेरी किस्मत में यह नहीं था. रोहन ने धीरे से कहा,

होता है। दोनों स्टेशन की तरफ चाय लेने चल पड़े और वहां रोहन ने देखा अमन भी खड़ा था, हाथ में एक कैसेट प्लेयर। रोहन हैरान, तू यहां? अमन बोला, स्टोरी में मेरा भी रोल है बॉस। तू पागल है? पता है। अमन ने कैसेट प्लेयर रोहन को दिया, लास्ट टेप। रोहन ने कैसेट डाली, लेकिन कैसेट पे लिखा था 1998 द एंड। रोहन ने प्ले दबाया, मीरा की आवाज आई, तुम दोनों अगर ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुमने आखिरकार एक दूसरे को माफ कर दिया। रोहन और अमन एक दूसरे को देखने लगे। अमन धीरे से बोला, हमने तो एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं किया था। रोहन बोला, तू मुझे ब्लेम करता था, तू भी। मैं नहीं करता था, तू बिल्कुल करता था। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन टेप में मीरा की आवाज अब सीरियस थी। अब असली बात, 1919 में जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। रोहन की हंसी रुक गई, मैं गई नहीं थी और तुम दोनों अलग नहीं हुए थे, किसी ने तुम दोनों को अलग किया था। कैसे रुक गई। रोहन ने अमन की तरफ देखा। अमन ने धीरे से कहा, अब समझा क्यों मुझे भी बुलाया गया था।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: रोहन ने पूछा, कौन? अमन ने कहा, स्कूल में एक आदमी था। कौन? हमारी म्यूजिक टीचर, मिस्टर सिन्हा। अमन ने सर हिलाया, उन्हें पता था हम दोनों के बारे में। रोहन को कुछ याद आया, 1998 में रोहन और मीरा स्कूल बैंड के लिए म्यूजिक प्रैक्टिस किया करते थे। अमन गिटार बजाता था। एक दिन रोहन ने मीरा के लिए गाना रिकॉर्ड किया, वही कैसेट, लेकिन वो कैसेट मीरा तक पहुंची ही नहीं। मिस्टर सिन्हा ने रोक ली थी। क्यों? अमन के पास जवाब नहीं था। तीनों ने पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स चेक किए। मिस्टर सिन्हा का नाम एक ओल्ड म्यूजिक कंपटीशन फाइल में मिला, उसके नीचे एक एड्रेस, लखनऊ। अगले दिन तीनों लखनऊ पहुंच गए। एक पुराना घर, डोर पर नॉक करी, एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोला। रोहन ने पूछा, मिस्टर सिन्हा? आदमी ने उन्हें देखा, तुम लोग कौन? रोहन ने कैसेट निकाली, बुजुर्ग की आंखें पहचान गई। तुम? वो कुर्सी पर बैठ गए। मैं तुम लोगों को अलग करना नहीं चाहता था। अमन ने बोला, तो फिर क्यों? मिस्टर सिन्हा ने कहा, क्योंकि तुम दोनों बच्चे थे, तुम्हारे माँ बाप को लगता था कि तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी पढ़ाई खराब कर रही है। रोहन हैरान, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं गलत था, मैं समझा कि वक्त के साथ तुम दोनों भूल जाओगे। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन हम नहीं भूले। मिस्टर सिन्हा ने एक ड्रॉर खोली, अंदर एक पुराना एनवलप, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा था रोहन। रोहन ने एनवलप लिया, उस पर लिखा था, मीरा के लिए। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, ये कभी उस तक पहुंचा ही नहीं। मिस्टर सिन्हा ने कहा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम एक दिन सच पता चले। रोहन ने लेटर खोला, सिर्फ एक लाइन थी, मीरा, अगर दुनिया मुझसे तुम्हें दूर कर दे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मीरा ने लेटर पढ़ा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम बड़े ड्रामेटिक थे। रोहन हंस पड़ा, 1998 था, तब तो हमारे पास नेटफ्लिक्स भी नहीं था। तीनों हंस पड़े, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मिस्टर सिन्हा ने कहा, एक और कैसेट है। कौन सी? जो तुमने कभी सुनी ही नहीं।
3: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।

मिस्टर सिन्हा ने एक छोटी सी कैसेट निकाली। ये 1998 की लास्ट रिकॉर्डिंग है। रोहन ने कैसेट प्लेयर में डाली, क्लिक, गिटार की आवाज। अमन ने आंखें बंद कर ली। ये तूने बजाया था? रोहन बोला, मुझे याद नहीं है। अब रोहन, अमन ने कहा, मैं भूला नहीं हूं। फिर एक आवाज रोहन की, यंग रोहन, थोड़ी सी ऑकवर्ड, थोड़ी नर्वस। मीरा, कैसेट में उसकी आवाज आई। पता नहीं ये तुम्हें कब मिलेगी, शायद कल, शायद 10 साल बाद, या शायद कभी नहीं। लेकिन अगर तुम ये सुन रही हो तो बस इतना जानना, तुम मेरी फेवरेट पर्सन हो। मीरा ने आंखें नीचे कर ली। रोहन चुप। कैसेट में यंग रोहन बोल रहा था, मैं बड़ा होके बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, बहुत सारी जगह जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। टेप खत्म। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर अमन बोला, भाई तू 16 साल की एज में मुझसे ज्यादा रोमांटिक था। रोहन हंस पड़ा, मीरा भी। और उस मोमेंट में 1998 और 226 के बीच, 2026 के बीच का सारा डिस्टेंस जैसे खत्म हो गया। रोहन ने मीरा से पूछा, अब मीरा बोली, अब क्या करें। मीरा ने कंधे अचकाए, चाय पीते, बस पहले चाय, फिर देखते। रोहन मुस्कुरा दिया, कभी कभी लाइफ को कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती, बस एक बिगनिंग चाहिए होती है। तीनों रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़े। रोहन ने अपनी पॉकेट से वो पुरानी कैसेट निकाली। उसने देखा और सोचा, हम टेक्नोलॉजी के साथ कितना आगे आ गए, स्ट्रीमिंग, क्लाउड, AI, वीडियो कॉल्स, लेकिन कुछ यादें अब भी कैसेट की तरह होती हैं। उन्हें रिवाइंड करना पड़ता है, तब जाकर समझ में आता है कि कहानी एक्चुअली कहां से शुरू हुई थी। और फिर मीरा रुक गई। रोहन, हाँ एक बात पूछो। पूछो। तुमने वो पेन कभी संभाल के ही रखा था? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया, कौन सा पेन? मीरा मुस्कुराई, जो मैंने 1998 में तुमसे लिया था। अमन बोला, अब ये क्या नया राज है? मीरा ने कहा, पेन मेरे पास अभी भी है। रोहन हंस पड़ा, तुमने 28 साल तक पेन रखा? मीरा बोली, तुमने कैसेट रखा? बराबर का हिसाब है। और दोनों हंस पड़े।

तीन महीने बाद रोहन अपने घर में पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। अमन फोन पर था। मीरा किचन से चिल्लाई, रोहन चाय। रोहन बोला, बस दो मिनट। अमन फोन पे हंसने लगा, भाई तू फिर वही कर रहा है क्या, दो मिनट। रोहन भी हंस पड़ा। 1998 से कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली थी। उसने अलमारी से वो पुराना वॉकमैन निकाला, कैसेट अब भी अंदर थी। उसने प्ले दबाया, क्लिक, और फिर यंग रोहन की आवाज, मीरा। रोहन मुस्कुरा दिया। उसने वॉकमैन बंद कर दिया। कुछ यादों को बार बार सुनने की जरूरत नहीं होती, एक बार मिल जाए तो बस अंदर कहीं बसती रहती हैं। रोहन बालकनी में आया, नीचे शाम हो रही थी। अमन का मैसेज आया, कल स्कूल चलते हैं। रोहन ने अप्लाई किया, क्यों? अमन ने कहा, कैंटीन की चाय पीनी है। रोहन पागल है क्या? अमन बोला, हाँ। रोहन हंस पड़ा। मीरा पास आई, कौन था? अमन, क्या कह रहा है? कैंटीन चलने को। मीरा बोलती है, चलते हैं। रोहन हैरानी से देखा, तुम भी? Obviously. और तीनों अगले दिन अपने पुराने स्कूल के बाहर खड़े थे। गेट वही था, कैंटीन छोटी थी, चाय वैसी ही बेकार थी। और रोहन ने पहला सिप लेते ही कहा, यार ये चाय 1998 में भी खराब थी। अमन बोला, यादों के टेस्ट साथ टेस्ट इंप्रूव नहीं होता है। मीरा हंस पड़ी। फिर रोहन ने कहा, एक चीज समझ में आई। क्या? हम सोचते हैं कि नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी चीजें, पुराने गाने, कैसेट, दूरदर्शन, वीडियो गेम्स, मारियो, स्कूल। लेकिन असली नॉस्टैल्जिया लोग होते हैं, वो लोग जिन्हें हमें कभी सच में गुड बाय नहीं कहा। थोड़ी देर तीनों चुप रहे। फिर रोहन ने कहा, चलो। कहाँ? घर। क्यों? एक कैसेट रिकॉर्ड करनी है। अमन हंस पड़ा, अब कैसेट कौन सुनेगा? रोहन बोला, हम नहीं। तो फिर? रोहन ने मीरा की तरफ देखा, हो सकता है 2054 में कोई सुन ले। मीरा मुस्कुराई। रोहन ने रिकॉर्ड बटन दबाया और कहा, हेलो, अगर तुम ये कैसेट सुन रहे हो तो मतलब तुमने फाइनली अपनी अलमारी साफ कर ली है। टेप चलती रही और कहानी इस बार पॉज नहीं हुई।

0: तो दोस्तों कहानी खत्म। परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद कहानियों का परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ परफेक्ट हो तो या तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं या फिर मशीन, और हम तो इंसान हैं भाई, गलती करेंगे, लेट होंगे, कुछ बातें नहीं कह पाएंगे, कभी ईगो बीच में आ जाएगी, कभी वक्त, और शायद यही इम्परफेक्शन हमें इंसान बनाता है। वैसे भी परफेक्ट कहानी लिखेगा कौन? कोई इम्परफेक्ट आदमी ही तो लिखेगा। तो अपनी जिंदगी को थोड़ा इम्परफेक्ट रहने दीजिए, हो सकता है वही उसकी सबसे खूबसूरत बात हो। मैं हूँ अर्पित और ये था इधर उधर की बातें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, आप ड्राइव सेफली करिए, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं किसी या ना किसी के लिए, और जिंदगी को थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलने दीजिए। मिलते हैं अगली बार।
1: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
2: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
1: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
2: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
1: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
2: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
1: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
2: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
1: Or visit brown-immigration.com.
2: Brown Immigration Law. Local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM,